सुरहाउ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुरु संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चित वह उद्यम। जा आहर हर जीव परया, शैल पत्थर मह जंतु पाए। ताका रिजक आगे कर धरिया, मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे काष्ट हरिया रहाओ।

मन भाओ करिया ऊडे ऊडा वैसै कुसा तिस पाछे बचरे छरिया इन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संतोह जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक पेहारी जी, सब तेरे चोज विड़ाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौं तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुकत भए जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी। जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी, तिन का भाओ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता। तेरी अनिक करह हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहुसिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निहचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सोई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी,

सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाउ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जीव जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिस नौ तू जानाहे, सोई जन जानै। हर गुण सद ही आख बखाणै, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेख जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ै पहले निवासा, पाणी पावक तिन्हे किया। पंकज मोह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले। मन एक न चेत समूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया, पूरक मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे कितै न काम। मिल साध संगत भज केवल नाम, सरन जाम लाग भव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संयम धर्म न कमाया। सेवा साधना जानिया हर राया, कहु नानक हम नीच कर्मा। शरण परे की राखो शर्मा,

श्री वाहिगुरू जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सुबह तुम काव हो, आप हाथ दै मुए बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को संगरिए। पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु करे हो रक्षा। राख ले हो मुहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु।

नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दै जच्छन पजायो, आदंते कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जाबुद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन से सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही कूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो वार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है, रक्षा हुए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट चाह छव सकै न कोई।

मानु अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो श्री असुपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ सब तुहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के कहूँ तुहारू द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार सगल द्वार को छाड़ के कहूँ तुहारू द्वार वाहे गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दूता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द

साजन भय सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारु जेको खावे जेको पुंचे तिसका हुए उदारु एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारु तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारु श्लोक महल

तरस पयोई, तरस पया मेहरा मत हुई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरिया। तरस पया मेहरा मत हुई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरिया। पौड़ी तिथे तू समरथ, जिथे कोई नाहे उथे तेरी रख। अग्नि उदर माहे, सुनके जमके दूत, नाए तेरे छड़ जाहे। भौजल विखम सगाहो, गुर सबदी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे। कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सबसे

अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाऊ नित्री सतगुरु पेखना श्रवणी सुनना गुर नाऊ सतगुरु सेती रते आदर गह पाइय ठाऊ कहु नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे जग में

मन तन देह सुखाली राव। पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मोहे तिसका परवासा। बख्श लए सब सच्चा साहिब, सुन नानक की अरदासा। पतित उदाहरण सतगुर मेरा, मोहित

बोलो जी, बोलना जी। अरदास एक ओवंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ने हुई सहाय। अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जे लिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कर नौ निगा बहताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी। बोलो जी, बोलो जी। निमाणिया दे मान, नितानिया दे तान, नियोटिया दी ओट, गुरु गरीब निवाज। तन तन तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, आप जी दे मुबारक चरणा कमलों में अरदास बेनती है। सचे पातशाह आप जी दे पाने अंदर हुक्म अंदर चार पहर तीन सुखां दा बतीत होया है महाराज जी। अमृत वेले तो इस वेले तक आप जी ने खुले दर्शन दीदार देके निहाल कीता है। रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी की सेवा संभाल सोलह साहब जी की बाणी का जाप किया है महाराज जी। बेअंत संगत दूरों नेड़ों चल के आप जी के दरबार दियां हाजरियां भरियां ने महाराज जी। मेहर करियो गुरमुख परिवार सरदार जगविंदर सिंह सनोफ कुलविंदर सिंह महाराज जी, आप जी ने नवी गड्डी बख्शिश की है महाराज जी। शुकराना करन लई सारा परिवार आप जी के चरणा कमलों में हाजिर है। कारोबार की चढ़ती कला लई अते गड्डी सुखमई सुख नौनी बनाउनी महाराज जी। परिवार दियां मनोकामनावां पूरियां करनियां सेवादारां कोलों आप जी की हजूरी विच सेवा करदे आ, बेअंत भुलां हो जांदियां ने, बख्श लैणा सतगुरु जी। रहण आई है सुखमई बतीत करायो जी। इस वेले सेवादार हाजिर ने, आग्या बख्शिश करो। निज स्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो, अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना जी। सुख होवे नाम चितावे नानक ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

निकी कीरी मैं कल रख है भस्म करै लश्कर कूट लख है जिसका सास न काटते आप ताकव रखत देकर हाथ मानस जतन करत बव भांत तिसके कर तब बिरथे जात मारे न रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपी है पी अमृत एहो मन तन त्रपी है नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम धन नामो रूप रंग नामो सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने उठत बैठत सुवत नाम कहु नानक जन कै सद काम बोलो जस जिहबा दिन रात प्रभ अपने जन की नी दात करै भगत आत्म कै चाए प्रभ अपने स्यों रहे समाए जो हुआ होवत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिस की महिमा कौन बखानो तिस का गुण कह एक न जानो आठ पहर प्रभ बसै हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की ओट ले मन तन अपना तिन जान दे जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिस के शरण सर्ब सुख पावै तिसके दर्स सब पाप मिटावै अवर सियाणप सगली शाड तिस जन की तू सेवा लाग आवण जान ना होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाओ तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बिकार ते हटै सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै गुर के ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सहै आपस पौ कर कशना जनावै हर हर नाम हृदय सद तिहावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक की कार्ज रास सेवा करत होए निहकामे तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सार बिन धान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जान जन मैं पार ब्रह्म एक आप नहीं काश भरम सह सियाण पलया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़पागी पाइए सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करण आगाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर आख्याओ जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखै होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए जिहबा एक उस्तत अनेक सतपुरख पूरन बबेक काहू बोलना पौचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निरबानी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सदबलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोय अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाकै मन प्रगटे गुण तास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया के संग न लेप मन में रखै हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तह तिनासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद पहया दुख नाठे पहाई जन मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे भाओ चूका निरभाओ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिस का सातिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कलातार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साध कै संग रच रचना अपने काल तारी अनक बार नानक बलहारी श्लोक
साथ ना चलै बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत बिसारो चरण कमल हृदय में उर तहारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहु नाम हर वथ कीर्तन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखू मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उठ पावै सो धन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछै मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोभा को करै भली करनी सा सोभा भाज हर की सरनी अनकू पावी रोग ना जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रबुद्धो हर कै नाए दह दिस तावत आवै ठाए पाकौ बिघन न लागै कोई जाकै हृदय बसै हर सोई कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भौ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अबिनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहै जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इउ रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक उपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सतीर तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सोत मीत कुटुंब अर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विसथार इनते कहो हो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझै ना बेगाना ना बिसार नानक पशुताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बौडू बेस्याने हर के भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखू मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपाव हो सुनत कहत रहत गत पाव हो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाए हो मैं बेखुफैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम संभाल छड़ सियानप सगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी संच करहु व्यवहार इहां सुख दरगह जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जा कै मस्तक लेख एको जप एको सलाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मान तान जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरन पूर रहो प्रभ व्याप अनक बिसफार एक ते पहे एक आराध पराशत गए मान तन अंतर एक प्रभ राता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपने भगती लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगौ तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावाओ सास सास प्रभ तुम्हें त्यावाओ चरण कमल सिउ लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एक आधार नानक मंगै नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावै बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजै चाओ साध कै संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास आन दिन लिवलाग बडभागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुकत जन पहया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी श्रद्धा सब पूरी रव रहया सब संग हजूरी जिस का सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिस

विचार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो गुण तास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन यंत्र एही सुआओ, नेत्रों पेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए। भगत जना कै मन तन रंग, बिरला को पावे संग, एक बस्त दीजै कर मया, गुरु प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नानक रहया सर्ब समाए। प्रभ बख्शंद दीन दयाल, भगत वशल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व घटा करत प्रतपाल, आदि पुरुख कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार, जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच अजान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमक हर के गुण गाए। अनेक राज भोग बढ़ियाई, हर के नाम की कथा मन पहाई, बहु भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, भली सो करनी शोभा धनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक प्रगास।

जाप अष्टपदी। जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक सूग कहो किसै व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम। आपन खेल आप वरतीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए ताव सेव सकत कहो हो के तठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अभिनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शिदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सोत पाई। जय सर्व कला आपे प्रवीण तह बेदक तेव कहा को चीन। जब अपन आप उरत हरै तौ सगन आप सगन कहा विचारै। जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्मर हे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जह अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया। आपस कौ आपे आदेश तेहो गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता। जह आपन आप पतियारा तह कौन कथा कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पहुचा। जह आप रचियो प्रपंच आकार तेहो गुण में कीनो बिसथार। पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुर्ग बंशावत। आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पह पार।

सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप जय पसरे पसार संत प्रताप दुहू पाक का पे तने उनकी शोभा उनहु बने। आपे कौतक करे आनंद चोज आपे रास भोगन निरजोग। जिस भावै तिस आपन नाय लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेशुमार अथा अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथै आप सुनने हार आपे एक आप बिसथार। जातिस भावै तां श्रिष्ट उपाय आपने पाणे लय समाए। तुम ते भिन्न नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए। जा कहो प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल श्रिष्ट का जेता। जी जंत्र सबता कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस रख है तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मन हो बिसारै। तिस ताज अवर कहां को जाए सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ। गुण निधान बेअंत अपार नानक दास सदा बलहार। पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल। अपने करतब जाने आप अंतर जामे रहे ओ ब्याप। प्रतपालै जीअन बहु भांत जो जो रचियो सो तिसै त्यात। जिस भावै तिस लय मिलाए भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न ब्रथि जाए। सेवक कौ सेवा बन आई हुक्म बूझ परम पद पाई। इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार। बंधन तोर पए निरवैर आन देन पूजै गुरु के पैर। ए लोक सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले। साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद। राम नाम तत करो विचार दुर्लभ देखा करो उधार। अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का ए है सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखो नेरा मिटै अज्ञान बिनसै अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसावहो मन इच्छे नानक फल पावहो। हलत पलत दोए लेहो सवार राम नाम अंतर उरतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच परिखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच वापार करहु वापारी दरगह निब है खेप तुम्हारी। हे काटे करखो मन माहे नानक बहूर न आवै जाहे। तिस ते दूर कह को जाए उबरै राखन हार ते आए। निरपाओ जपै सगल पाओ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन कहो कोई न पौचन हार। सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कार्ज पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ट। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान। जिस मन बसै सोहो तनिहाल साके निकट न आवत काल। अमर पै अमरा पद पाया साध संग नानक हर तिहाया। सलोक ज्ञान।

गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मान मंग, आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो, हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उद्धारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चित वो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमूलिक लाल एह रतन, सुनत कमावत होत उधार, आप तरह लोकै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उधरै तिनके साथे, सारण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पए सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पए गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहो तिने धान, सर्ब इच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बाहुर ना हुवै आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रिद नाव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मध सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निधान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोबिंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए, साध सरण नानक ते आए, जिस

नानक एह गुण नाम सुख मनी। सब ते ऊचता की सोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी। सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

परवार ऐसा धार मन्ने तरह तारे गुरसिख मन्ने नानक भवै न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मानु पंचे सोह दर्रा जानु पंचा का गुर एक त्यानु जे को कह कर विचार करते कह करने नहीं समार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै हुए सच्यार तबले ऊपर के तापार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तल कवन जूर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बड़ी कलाम एहो लिखा लिख जाने कोई लिखा लिखिया किता।

असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कह सिर पार होए अखरी नाम अखरी शालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाही जिव फरमाए तिव तिव पाही जीता कीता तेता नाओ विण नावै नाही को थाओ कुदरत कवन कहा।

क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकारु अंत न जापै पारावारु अंत कारण कीते बिललाहे ताके अंत न पाए जाहे एहु अंत न जाने कुए बहुता कहिए बहुता हुए वड्डा साहिब ऊचा थाउ ऊचे उपर ऊचा नाउ एवड़ ऊचा हुवै कोय तिस ऊचे कौ जाने सोय जेवड़ आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल न तमाए केती मंगह जोद अपार केतियां गणत नहीं विचार केते खपत।

गावै राजा धर्म दुआरी, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे, गावै इंदिन दासन बैठे देवते आदर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़ नरकीसर जुग जुग वेदा नाले, गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावन रत्न पाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले, गावै जोत महाबल सूरा गावै कहानी चारे, गावै खंड मंडल।

आई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वड्याई जो तिस भावै सूई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पत झोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाथ आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग द्विकार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस इका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उन्हां नदर न आवै बहुता इहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया।

जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोय। राती रुती तिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल। तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी

जाय। धर्म खंड का इहु धर्म, ज्ञान खंड का आखु कर्म। केते पवन पाणी वैसंतर, केते काण महेश, केते बरमे काढ़त घड़ी है। रूप रंग के वेश केतियां।

पानुकाने नमो कलाकर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रेयनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार लंके नमो वास आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी छांद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपक अकाल दयाल अलेख अपेख नाम काम गा अटाह नाथि प्रमाथि अजो नियमुनि न राग न रंगे न रूपे न रेखे करमंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रया छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल नामे समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचिदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनि मे हरियं करियं करिमुल रहीमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते स्वयं पव सुपंग सर्व

श्री भगवान को भेद न पायो, को बतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजन तायु, पूर क्रिया जो सब ही जग,

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे पिणवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहत तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

सुनै कुदरत भाव सुखसार कुदरत पातालियां का सिंह सर्प कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्पयाल कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मानव मान कुदरत पौन पानी बै

और निरंकार सच नाम जाका किया सगल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ निरण जना मंचाओ, सिखी सिख्या गुरु विचार नदरी कर्म लंघाए पार, बोलू चरखा चक्की चक हलवा रुले बहुत।

तीर्थ नावैर चा पूजा अगरवास दहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्या

मुसलमान की पीड़े पे कुम्हार घट पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोए बपड़ी चढ़ चल पव्यंग्या नानक जन करता कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुरु।

0: धर्मी धर्म करै गावै वै मंगै मुख द्वार जति सदावै जुगत न जाने छड बह करबार सबको पूरा आपे होवै घट न कोई आखै पथ परवाना पिछे पाईऐ ता नानक तोलिया जापै महला पहला
1: सूरज ज्ञान का सच्चा विखै सोए सबनी शाला मारियां करता करे सोए अगै जात ना जोर है अगै जियो नवे जिनके लेखे पत पवे चंगे से ही के पौल तुर कर्म जना कुछ पाया।

दया कपह संतोख सूत जत गंडी सतवट ए जनेऊ जी का है ता पांडे कत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाय तन सो मन स्नान का जो गल चले पाए चौपड़ मुल आया बह चौके पाया सिखा।

गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरण न जाई, तोती टिक्का ते जप माली तान मले छा खाई, अंतर पूजा पढ़े कते बांस।

मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुरे जगत कसाई नील बस्त्र पहर होए प्रवान मलेच धान ले पूजे पुराण आप आख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार उपर आया बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत

संगत सृष्ट निहाल करी रामदास गुरु जगतारन का गुरजोति अर्जुन महे तरी जग और नहे महा तम मैं अवतार उजागर आन किया तिन के दुख कोटिक दूर गए मथुरा जन अमृत नाम पिया एह पद्धत ते मत चूक है रे मन भेद पभेद न जान बिया पर ताश हृदय गुर अर्जुन कै

परमेश्वर भयो। हर सिंहासन दियो श्री गुर तह बैठायो, रहस कियो सुर देव तोहे जस जय जय जंप। असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंप, काटे सो पाप तिन नरों के।

थाओ नाही जिस पह करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। विचे धरती विचे पानी विच काष्ट अगन त्रिजै, बकरी सिंह इकत्ते थाए राखे, मन हर जप भ्रम भाओ दूर की जय। हर की वडियाई।

इन किए किसह न चेतह बपुड़े हर गुरमुख सो जी पाई। हौ मैं रोग सब जगत ब्यापिया तिन को जन्म मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटे तिस जन को हौ बलिहारी। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाने ताका रूप अपारू नानक आपे वेख हर बिगसै

ज्यों हर भावै त्यों रखियै, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किच कर हम सा कह, ज्यों भावै तिवै बख्श रहाऊ।

जिहा तुद तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद श्रेष्ठ सब साजी कोई छेवा करहु जे किच कीता हुवै इक ना सतगुर मेल तू बुझावै इक मनमुख करहै सिरुवै हर की वडियाई हौ आख न साका हौ मूरख मुगद नीचाण जन नानक को हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद

तब एको एकंकारा कवन रूप दृष्टियो बिन सायु कत है गयो ओ कत ते आयो रहाओ जल ते उठ है अनिक तरंगा कनिक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते एकंकारा सहस कटा मैं एक आकाश घट फूटे ते उही प्रगास

कवन कहा गुण कंत प्यारे, सुगड़ स्वरूप दयाल मुरारे। रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख काया। कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, धन सब सुख पावे, जा फिर कर आवे। गुण काम

रहाओ। लोभ लहर को विक्स फूल बैठा, साध जना का दर्श न डीठा। कब हूं ना समझे अज्ञान गवारा, बहुर बहुर लपट्यो जंजारा। रहाओ बिखै नाद कर्ण सुन पीना, हर जस सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखत अंधे, छोड़ जाहे।

अचेत व्यवस्था मह लपटान रहाउ। महामोहे मोहयो गावारा, पेखत पेखत ऊठ सिधारा, ऊचते ऊचता का दरबारा, कोई जंत बिनाहे उपारा, दूसर हुआ ना को हुई, जप नानक प्रभ एको सोई।

सुख सहज मन आवै शांत, सतगुरु की रेण वडभागी पावै, नानक गुर कौ सद बल जावै। सूही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए, सिमरौ सो प्रभु अपना स्वामी, सगल कटा का अंत।

कहाओ अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किने विर ले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल वस है मेरे चीता नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरन गुणतास। सूही महला पंजवा मीत साजन सुत बंदक पाई जत कत पेखों हर संग सहाई जत मेरी पत मेरी धन हर नाम सुख सहज आनंद विश्राम रहाओ। पार ब्रह्म जप पहर सुनाहा कोट आवध तिस बेदत नाही हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे काल कंटक जम तिस न बिदारे नानक दास सदा बलिहारी सेवक संत राजा राम मुरारी। सूही महला पंजवा गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा अनद विनोद मंगल सुखताहा चल सकिए प्रभ रावण जाहा साध जना की चरणी पाहा रहा कर बेनती जन तूर बाछाहा जन्म जन्म के किल विकलाहा मन तन प्राण जीव अर पाहा हर सिमर

अपार ब्रह्म की शरण जनता की। जन्म जन्म के भय मोह निवारे, नानक दास प्रभु कृपा तारी। सूही महल्ला पंजवा। अनिक बीग दास के परहरिया, कर कृपा प्रभु अपना करिया। तुम्हें छडाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना। रहाओ पर्वत दोख महा बिकराला, किन मह दूर किए दयाला। सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना।

बलिहाराओ। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा रहाऊ, साध संगत स्यों प्रीत बन आई। पूर्व कर्म लिखत तुर पाई, जप हर हर नाम अचरज प्रताप। जाल न साक है तीने ताप, निमख न बिसर है हर चरण तुम्हारी। नानक मांगे दान प्यारे, सूही महला पंजवा। से संजोग करहु मेरे प्यारे,

करत बिकार दू कर चारत, राम रतन रिद तिल नहीं तारत, भरन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी, शरण सम्राते अगोचर स्वामी, उदार नानक प्रभ अंतर जामी।

करण कारण समरथ अपार रहाओ। सब रूप मिटावे नवा निरुआ, नानक रखा आपे हुआ, सूही महला पंजवा।

उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी वाणी च फरमान करते हैं, सब सहे ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे है थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुर की सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुर की प्रसन्नता है, सतगुर जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुर जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। उस अपने सेवक दे ये लोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करेरी है। जो सेवक सतगुर नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु के वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारे, मैं एक गल जरूर कह दिया, हर एक इंसान की कोई ना कोई भटकना है। कोई किते भटक रहा है, कोई किते भटक रहा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है, कोई किसी नूं रब मानी बैठा है। जिन्ना चिर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चिर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगदा है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ईमान सुजन्म दुलंब है, होए ना बार बार। ईमान सुजन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारे, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसीं कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरदे ने, उसनों कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साढ़े ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वह भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होण वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तों जन्म लैणा पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ए मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनों मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इथे इसनों सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहते हैं कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटकै से आए जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जान का गेट बन जाएगा। फिर की होगा? केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियों दियां, पशुओं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख बिरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग गुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेन ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौन की भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी के दर ते, कदी किसी के दर ते, तू उस परमेश्वर का हो जाए। जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। जदों तू परमेश्वर का बन जाएगा, सारा संसार तेरा बन जाएगा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਾਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਥਾ ਸਰਵ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

नगर है, पिंड है। जीव आत्मा इसका सरदार है, चौधरी है, मुखी है। पर इस पिंड विच, इस नगर विच इकली जीव आत्मा नहीं बस, होर लोग भी हैं। वखरे वखरे रस्ते हैं,